सबको मलूद को चिचेनिक चुगुल कसर साहब रो वो चिन्हो अगेन को नी तो उसको चप चुके गोल से थी नहीं ले पेतू तक चुगुल खबो का मनूत इन कसर हुए चुचन ये कैसे भी गोल से आगे मीन के सुख चैनन को मुझे तने ने के नवा इगस रुद चम्याच को अब तीन देते ने तीन जंगल और तीत को गोल के सुख चबुआने इन जोकी नेत अब जब मंगे मेंगे में उद चौथन को अराका WH11 अक हराका WH301 चित्तौरे का सरता भी तुझे दिसाई नी अब वो बोल लगेंगे अक्टिव टेम गिच्योग असीगस कंबुनी चाब वेस्टर्न सीड को तुझे के सुख अलग हूँ अमेरिका 403 टीबी का सरता ने नुआच असीगस अगुबु आने को गरोरन कुन्यली लेन अमेरिका 505 चिमंगे में म्यानुआ गे अगुबुन रूद चेमियाच अमेरिका 507 चितिन्य मोबे चेगी मेन अगुन्यली लेन गुबातो गरोरन इन साइलेज अमेरिका 508 चिगिसे ने बांडे के चांग अगुबुन रूद चेमितन बराग मेन को सीरिन का सारे तन बरोब तन नुआच केरी इलेगे बैसिन के स्विच या नोटिन गुबुन वेस्टर्न सीड मेस रूटेजन राइनी अग्रोडीला Agrovet, distributor, Tupande, Ananko KV, outlet tagatugul, nenegitenin. In table tagatugul, ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi, to do the tab, meset tab tag FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.